0: Jamaica Radio.
1: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
2: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड वेमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
3: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
0: Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Feel good, lay back and enjoy the biggest hits through the night on Leica Radio.

0: है
1: लाइका रेडियो
2: नन ईटन गेट रेडी पेपेज पेरी पेरी इज फायरिंग अप समथिंग बिग आवर स्टोर इज नाउ ओपन फ्रॉम फ्लेम ग्रिल्ड चिकन टू माउथ वाटरिंग रैप्स इट्स बोल्ड इट्स स्पाइसी इट्स प्योर पेपेज विजिट अस एट 126 एबी स्ट्रीट CV 11 5BZ पेपेज पेरी पेरी पेपेलिशियस
0: ये है लाइका गोल्ड

0: Listen to Leica Gold 2 on Leica Radio mobile app, leicaradio.com and Alexa. Play Leica Gold 2.
1: भोजपुरी बवाल।
2: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं है।
3: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो।
4: कहाँ से ही झगड़ा चला था भाई।
1: द ब्रांड न्यू रियलिटी टीवी शो भोजपुरी बवाल, मंडे टू संडे एट 10 PM ऑन कलर्स टीवी।
0: वेक अप टू काजल एवरी वीकडे मॉर्निंग ऑन ब्रेकफास्ट। लाइक रेडियो।

0: products advertised across the largest Asian radio network. We are Leica Radio. Email sales at leicamedia.co.uk.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
2: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
3: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
4: Have you noticed the way fans shout at football matches?
5: Oh, wake up!
4: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
0: This is the largest commercial Asian radio network in the UK, soothing you through the night and early morning. This is Leica Radio Midlands.

मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले।

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भाव।

तेरे भगत रसाले और केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

0: Disha Basmati Rice, available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: History divided a nation but could never divide humanity.
2: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
1: Witness the epic reunion of Sunny Deol and Rajkumar Santoshi in Batwara 1947.
3: वो माँ है माँ, माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए.
1: Starring Shabana Azmi, Priti Zinta, Karan Deol and Ali Fazal.
3: हर बच्चे के मुंह से निकला पहला लफ्ज माँ है.
1: Produced by Amir Khan. Experience the untold story of courage and hope. Batwara 1947. Releasing in cinemas on August the 14th.
4: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं. एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है. शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स. दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स.
5: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
6: Lester Miller is back.
7: And the stage is about to explode. Confirmed artist,
6: Roach Killer. Get ready for big tunes, big vibes and a massive live performance.
7: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
6: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
7: Arts Council England.
8: Cool music for a super hot summertime. On the Leica Radio Network.

0: cashier.
1: Good morning. स्वागत है आपका, स्वागत है मनोरंजन की दुनिया में। हैप्पी ट्यूसडे, हैप्पी शिवरात्रि, हैप्पी श्रावण मास एंड हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी संगीत। भाई एक भूल सुधार करें, वो मिडलैंड में टेम्परेचर 23 नहीं, 30 भी नहीं, 28 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है आज का। आमतौर पर जो लंदन में टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उससे एक आध डिग्री कम होता है, लेकिन आज वहां ज्यादा है। सामना करेंगे साहब, घबराइएगा नहीं, मैं हूं ना मैं ऊपर बात करूंगा। और मौसम से डरना नहीं, हालांकि थर्सडे को बार बार याद दिलाया जा रहा है कि टेम्परेचर 36 डिग्री तक जा सकता है, जाए पर लौट कर ना आए, वही रह जाए। चलिए साहब बैक टू बैक संगीत की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम का आगाज कुछ इस तरह से होता है, बता दूं, माय नेम इज रवि शर्मा एंड आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून विद दिस मनोरंजन क्लब।
2: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. This is Leica.
1: लीजिए साहब ये गीत और डायरी से शायरी आपके नाम करते हैं। आप बहुत प्यारे श्रोता हैं, बहुत सारे श्रोता हैं, आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आपका मिलना और हमसे मिलना, आप किसको नसीब होते हैं।
3: सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे

0: ये हेडफोन जो है, हेलो हेलो 124 124, देखो फिर सीटी मार रहा है। 124 में ये 3 कहाँ गया? माइक्रोफोन भी लीक कर रहा है। 3 कहाँ गया भाई? हेडफोन भी लीक कर रहा है, माइक्रोफोन भी लीक कर रहा है, सारे फोन लीक कर रहे हैं। शुरू हो चुका है मनोरंजन प्रोग्राम और भाई दो गीत जो सुनवाए हमने आपको आज के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए, जो पहला गीत था आप आए बाहर आई। और ये बात भाई हमारे श्रोता मुझे कह रहे हैं सर आंखों पे, भाई आपका ये स्वागतम। हिना कहती है गुड मॉर्निंग रवि जी, आप पधार गए हैं, अच्छा लगता है। पम्मी कहते हैं साहब आप आते हैं ना तो दिन शुरू होता है, यू आर ए फैमिली एंड एवरीवन इज इन द वर्ल्ड्स, थैंक यू फॉर ए गुड प्रोग्राम, बेस्ट विशेज। पम्मी स्लाव से भाई आपके संदेश मिलते रहते हैं। महेंद्र पटेल क्रॉयडन में, क्या मुद्रा आपने तस्वीर में भेजी है, बहुत अच्छा लगा आपका संदेश। और नाजिया शकील आप भी भाई स्वागतम, आपका जो है वो सर आंखों पर खुशामदीद, थैंक यू वेरी मच। कहते हैं हैव ए नाइस ट्यूसडे, हैव ए नाइस एवरीडे, हमारी ओर से आपके लिए थैंक यू वेरी मच। भाई एक के बाद एक जो संदेश आके चिपकते जाते, कई बार मैं सारे एक्नॉलेज नहीं कर पाता हूं, लेकिन आप समझते हैं थोड़ी सी व्यस्तता रहती है यहां स्टूडियो में। भाई आज वो खबरें आपको हम 10:30 बजे सुनवाएंगे और फिर चिंतन होगा थॉट फॉर द डे 11 बजे की खबरों के बाद, और भाई दोपहर बाद 1 बजे तक गीतों का संगीत का सिलसिला जारी रहेगा लाइका रेडियो नेटवर्क के, लाइका गोल्ड और भाई लाइका रेडियो मिडलैंड में जो है वो आपका साथ निभाएगा रवि शर्मा इस पर। तो साहब हो जाए पाउंड का रेट।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK याद दिला रहे हैं, अच्छा रेट चल रहा है, पैसे भिजवाइए अपनों को। भारत में अगर पैसे भिजवाना चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 पाउंड के बदले 128 रुपए और 45 पैसे दे रहे हैं, 128.45 रुपीज। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाई यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीस एंड सीज अप्लाई। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
0: और डीजे साहब संदेशों का आना लगातार जारी है। सत्यनारायण सैनी फ्रॉम इंडिया कहते हैं रवि शर्मा जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ए भाई आपके यहाँ तो वेरी गुड आफ्टरनून है। हाँ सत्यनारायण सैनी जी आपको गुड आफ्टरनून, आपकी ओर से हमें गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा संदेश भिजवाते रहते हैं और बताते रहते हैं कि भाई आप हमारे साथ जुड़े हैं भारत से। और लोगों को भी जोड़िए ना, और लोगों को भी हमारे कार्यक्रमों के बारे में बताइए और उन्हें सुनवाइए। वैसे काफ़ी लोग सुनते हैं हिंदुस्तान में हमें, इसके अलावा वर्ल्ड भर में, ऑस्ट्रेलिया में सुनते हैं, अमेरिका में सुनते हैं, हालांकि टाइम के डिफरेंस के कारण कहीं कहीं वो रिकॉर्डिंग या बैक उसमें जाकर के आर्काइव से निकाल के सुनते हैं, पर सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच।
1: Like a radio. This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
3: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
0: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
3: स्वागत है श्रोताओं का मनोरंजन कार्यक्रम में। भाई मुझे संदेश आ रहे हैं, एक तो सुखी पूछ रहे हैं हाउ आर यू रवि जी, सुखी जी आप हैं सुखी मैं हूँ दुखी। नहीं बिल्कुल नहीं, आपका संदेश पाकर मैं सुखी हो गया, थैंक यू वेरी मच। आप कहते हैं कि मैं 3 times कांवड़ लेके आया, भाई बड़ी तपस्या है। देखो कहाँ कुछ लोग जाते हैं हरिद्वार और उससे भी आगे कुछ लोग गंगोत्री तक पहुंचते हैं, तो बिल्कुल शुद्ध पवित्र पावन जल लेकर के वहां से फिर पैदल चल के आते हैं, कई कई दिन का सफर हो जाता है। लेकिन यात्रा में भाई पहले वो उत्तराखंड है और फिर उत्तर प्रदेश है, तो सुविधाएं इतनी बनाई हैं इस बार क्योंकि योगी जी जो बड़ी व्यवस्था देखते हैं स्वयं, और कहीं कहीं तो भाई हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं उन तपस्वियों पर जो कांवड़ लेकर के अपने नगर या अपने शहर या अपने उस तीर्थ स्थान पर लौट रहे हैं जहां वो भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। बहुत अच्छी तपस्या सुखी, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। प्रतिभा कहती है रवि जी जिन्होंने अगर टेलीविजन पर या रेडियो पर न सुना हो तो बता दें कि कल सूर्य ग्रहण है, नंगी आंखों से सूरज की ओर ना देखें, ब्लाइंडनेस हो सकती है। क्या बात है भाई, ये सूर्य ग्रहण से जुड़ी एक खबर हमारे जो है प्रमोद कैट साहब हाउंसलो मंदिर से सूचना भिजवा रहे हैं कि रवि जी सूर्य ग्रहण के अवसर पर जो कि कल है 12 अगस्त को, तो हम अपने मंदिर को बंद रखेंगे। उस समय सभी कार्य भाई लोग रोक करके बस ध्यान दान ये इस तरह के धार्मिक कार्य करते हैं, तो मंदिर शाम 6 से 8 बजे के बीच लक्ष्मी नारायण मंदिर 60 Neville Close में जो स्थित है हाउंसलो में वो बंद रहेगा। बाकी मंदिरों से पूछ लीजिएगा भाई, उनकी कार्यक्रम 6 से 8 बजे के बीच बंद इसलिए रहेगा क्योंकि ड्यू टू रिलीजियस ऑब्जर्वेशंस एंड गाइडलाइंस रिगार्डिंग द एक्लिप्स द टेंपल ओपनिंग आवर्स फॉर 12th August विल बी खुलेंगे 12 अगस्त को सुबह 8 बजे मंदिर खुलेगा नियमित रूप से और 12 अगस्त को शाम 5:30 बजे बंद हो जाएगा। आमतौर पर शाम 8 बजे तक खुला रहता है लेकिन 5:30 बजे कल बुधवार को 12 अगस्त को ये प्रमोद कैट जी सूचित कर रहे हैं। और भाई आप जानना चाहेंगे कि कल सूर्य ग्रहण है तो किन किन क्षेत्रों में इसका असर होगा। कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, कुछ इलाकों में ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा जबकि कुछ जगहों पर ये आंशिक ग्रहण होगा, जो है पूरा नहीं होगा। अगर आप इसे सीधे न भी देख पाए तब भी दुनिया भर से इसकी शानदार तस्वीरें देखने के लिए भाई तैयार रहिए, वो मीडिया के माध्यम से पहुंचेगी। ये एक ऐसी घटना है आकाश में जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है और सूर्य की जो है आंशिक या पूरी रोशनी को धरती तक पहुंचने से रोक देता है। सूर्य ग्रहण कई प्रकार के होते हैं। अब ये बता दें आपको कि भाई दुनिया में आप कौन सी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ उस तरह का सूर्य ग्रहण होगा, चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पर है आपके इलाके से, और इस तरह से भाई वो कभी कभी सूर्य ग्रहण में सूर्य का सबसे भारी वायुमंडल दिखाई देता है, कभी वलयाकार तो कभी सूर्य की चमक डिस्क जैसी दिखाई पड़ती है। सूर्य ग्रहण पूर्ण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं। कल तो काफी कुछ होने वाला है भाई, आकाश में कई ऐसी घटनाएं घटेंगी जिनके बारे में हम विस्तार से कल ही बताएंगे। चंद्रमा सूर्य की पूरी तरह गोलाकार जैसे गोला सा बनता ना उस सतह को ढक लेता है और एक लकीर सी चारों तरफ नजर आती है सूर्य की, बाकी सूर्य पूरी तरह से ढके जाने से आसमान में वैसा अंधेरा हो जाता है जैसा सुबह होने से पहले या शाम ढलने के समय होता है। तो कल सूर्य ग्रहण है, समय जैसा मैंने बताया कि शाम के 6 से 8 बजे के बीच जो है यहां बताया जा रहा है कि होगा, तो बाकी कल और इसके बारे में सूचना देंगे। आज शिवरात्रि की बात कर रहे हैं हम और आज के दिन के साथ जो और भी खबरें जुड़ रही हैं भाई उनका देखते हैं आज क्या क्या समाचार हैं। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। पाकिस्तान और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच मक्का समझौते पर बातचीत हुई है। अमेरिकी कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, अदानी पर चल रहा आपराधिक केस खत्म हो गया है। गौतम अडानी। आयरलैंड को हराकर अफगानिस्तान ने किया 2027 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई। और कोलंबिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 132 हो गई है, वहां मुल्क में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। विस्तार से खबरें, सबसे पहली खबर ये, नेतन्याहू के गाजा पीस प्लान ठुकराने पर पहली बार डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है। विस्तार से सुनिए। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान को खारिज कर दिया था। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो जल्द ही इस पर रिएक्ट करेंगे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में प्रेस से कहा कि वो नेतन्याहू के रुख पर अपना जवाब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपना जवाब वहां पोस्ट करूंगा, मेरे पास एक अच्छा जवाब है। ट्रंप ने इस दौरान यह भी कहा कि नेतन्याहू के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं है। रूस के साथ जारी युद्ध में रात भर हमलों में यूक्रेन में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों जख्मी हुए हैं। यूक्रेन में जापोरिया के एक इलाकाई गवर्नर के मुताबिक इलाके में रूसी हमले में 6 लोगों की मौत हुई है, 19 जख्मी हुए हैं। भारत से आने वाली खबरों में, पूर्व शिक्षा मंत्री भारत के धर्मेंद्र प्रधान ने एक बयान दिया है। बयान का यूं कहिए कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर आज एक तीखा हमला बोला है। हाल ही में भाई वो जो स्टूडेंट्स के द्वारा प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, उनके दबाव के कारण धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब धर्मेंद्र प्रधान सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि स्टूडेंट्स की भलाई, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को लेकर के कांग्रेस लगातार झूठ फैला रही है उनके नाम पर। राहुल गांधी के पास सच नहीं है, आदतन झूठ बोलने वाले नेता प्रतिपक्ष को यानी अपोजिशन को न संसद में आते हैं न जवाब सुनते हैं, इन्हें तो बस अपना झूठ फैला करके घड़ियालों का आंसू बहाना है। ये बयान पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। पश्चिमी बंगाल से एक खबर आई है। पश्चिमी बंगाल भाई भारत में जो बंगाल है, सीएम शुभेंदु अधिकारी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। शुभेंदु अधिकारी खराब मौसम के चलते आज मेदिनीपुर जिले के कोलाघाट में उनके हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। बताया जा रहा है कि एहतियात के तौर पर पायलट ने हेलीकॉप्टर को कोलाघाट के खुले मैदान में उतारने का फैसला किया। दरअसल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कोलकाता के दमदम से हेलीकॉप्टर के जरिए पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के केशपुर के लिए रवाना हुए थे। कंगना रनौत ने भगोड़े शब्द का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी के लिए भाई कुछ ऐसे कड़े शब्द जो है बोले हैं। बीजेपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने पार्लियामेंट में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के मुद्दे पर चर्चा को लेकर कांग्रेस और अपोजिशन पर निशाना साधा है। उन्होंने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया कि स्टूडेंट प्रदर्शन के मुद्दे पर जब चर्चा हो रही है तो वो होम मिनिस्टर अमित शाह का जवाब सुनने से बच रहे हैं, पार्लियामेंट में आने से कतरा रहे हैं, या कभी कभी वो उठ के चले जाते हैं। वो कहती हैं कि यही जवाब मांग रहे थे और अब जवाब सुनने के लिए भगोड़े बने हुए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डीआर कांगो में इबोला के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है। इबोला एक बीमारी है भाई। WHO के मुताबिक हेल्थ अफसरान जो है वो अब भी वायरस पर काबू पाने की वहां कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्फेक्शन की रफ्तार बहुत तेज बनी हुई है। इस मुल्क में इबोला का मौजूद प्रकोप करीब 3 महीने पहले ही फैलना शुरू हो गया था और तेजी से फैल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और अपोजिशन पर निशाना साधते हुए कहा है कि डेमोक्रेसी में सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन जवाब सुनना भी जरूरी है। सेम बात भाई जो थोड़ी देर पहले मैंने खबर सुनाई थी आपको कंगना रनौत की ओर से। इंटरनेशनल खबरों में पाकिस्तान और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच मक्का समझौते पर एक बातचीत हुई है। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इजाक डार ने कल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची से फोन पर बात की। इस दौरान इजाक डार ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हाल ही में हुए मक्का डिफेंस समझौते के जो मेन बिंदु हैं उनकी जानकारी विदेश मंत्री को दी, ईरान के विदेश मंत्री को। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की ओर से जारी बयान के मुताबिक बातचीत के दौरान इसहाक डार ने मक्का समझौते के जो मकसद है उनके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि समझौते का उद्देश्य स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को मजबूत करना है और इलाके में शांति और सुरक्षा में भूमिका निभाना है। ईरान के कंसर्न है भाई, क्योंकि इस समझौते में शामिल है मक्का समझौते में शामिल है जो तीन देश, उनमें एक देश से ईरान की नहीं बनती है, सऊदी अरब। और एक खबर भारत के बहुत बड़े उद्योगपति के लिए, अमेरिका की एक अदालत ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ कथित सो कॉल्ड धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी से जुड़े क्रिमिनल आरोपों को परमानेंटली खारिज कर दिया है, खत्म कर दिया है। अमेरिका के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क की जिला अदालत ने न्याय विभाग की ओर से दायर मामले को खारिज करने की याचिका मंजूर कर ली है। और आयरलैंड को हराकर अफगानिस्तान ने तीसरे वनडे में आयरलैंड को 3 विकेट से हरा दिया है और इस जीत के साथ ही अफगानिस्तान ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बेलफास्ट में कल खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी की और टीम ने आयरलैंड को 40.3 ओवर में 206 रन पर ऑल आउट कर दिया। जवाब में अफगानिस्तान ने 44.5 ओवर में ही 7 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। और आखिरी खबर, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हालिया फौजी संघर्ष को लेकर मुआवजे की मांग की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान युद्ध के दौरान हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर रहा है ईरान, तो अमेरिका भी ईरान से उन लोगों के लिए मुआवजा मांग सकता है जो ईरान के हमलों में मारे गए या गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
2: Like a radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
3: आइए अब लौटते हैं म्यूजिक की ओर, सुनते हैं साधना सरगम की इस सुरीली आवाज को।

0: सबसे निराला मैम्स्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All मैम्स्टर प्रोडक्ट्स आर नट फ्री एंड मेड इन कनाडा. नाउ अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एशियन ग्रोसरी स्टोर.
2: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
3: Listen, our little Garba stars, तैयार थे जाओ. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with live from India. Saturday 17th October, बपोरे 1 थी 4 at Avanti Field School, Leicester. 1 थी 10 वर्ष ना kids माटे entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call PHL 07957477330. Musti, music and a full on Garba fun. Radio partner, Leica Radio.
4: ए बी सी डी कहाँ गई थी?
5: About to explode. Confirmed artist. Shin DCS.
4: Hey, क्या हुआ? क्लास में खड़े हो जाओ. ABC पढ़ के सुनाओ.

0: basmati rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: History divided a nation but could never divide humanity. Witness the epic reunion of Sunny Deol and Rajkumar Santoshi in Batwara 1947. Starring Shabana Azmi, Priti Zinta, Karan Deol, and Ali Fazal.
2: Har bachche ke muh se nikla pehla lafz maa hai.
1: Produced by Aamir Khan. Experience the untold story of courage and hope. Batwara 1947. Releasing in cinemas on August the 14th.
3: Be part of a historic grand opening.
0: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
3: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
0: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
3: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
4: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
5: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 p.m. on Colours TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lionecroft.
6: खतरों के खिलाड़ी
7: और आइए अब खबरों का रुख करते हैं। और भाई खबरों में प्रधानमंत्री ने जस्टिस सेक्रेटरी से कहा है कि कुछ और ऑप्शंस तलाश करें जिनके तहत सीरियस क्रिमिनल्स को जेलों में जगह बनाने के लिए जल्दी रिहा ना किया जाए।
8: Top stories this hour. The government will set out how it'll keep the killers of PC Andrew Harper in prison when Parliament returns in September. Andy Burnham last night told the Justice Secretary to work through further options to ensure serious criminals are exempt from an early release scheme in England and Wales. Councils could soon be handed more powers to stop betting and vape shops opening on high streets. Andy Burnham's planning to scrap rules which restrict authorities' ability to block bookies shops across Britain. And new stores selling e-cigarettes in England will need to apply to councils. Housing Minister Sally Jamieson says bold steps are needed.
9: We need a longer-term strategy to really make sure we have a full regeneration of our high streets, particularly in towns and smaller cities who have really struggled in the aftermath of COVID and that demise of in-person retail. So this is another step really on the journey to see that revitalisation.
8: People in parts of Colombia are waking up to huge rescue operations following a devastating earthquake. More than 160 individuals are known to have died. We're being encouraged to take steps to stay safe as amber heat health alerts are in force for most of England. That includes drinking plenty of water and checking on the vulnerable. It's reported Donald Trump hid in a catering container as part of a plan to secretly switch planes as he left last month's NATO summit. The US president was seen boarding Air Force One in Turkey for a flight to Britain, but sources say he was moved because of a threat from Iran. Mr. Trump had told reporters at the summit about security concerns.
10: I'm number one on the kill list for Iran. I'm number one on, I like being number one on TikTok better. But I'm number one on the list for killing.
8: And Chessington World of Adventures says it'll be reopening today after being forced to close due to a burst water main. The theme park had to turn away customers yesterday. From Sky News, I'm Kat Suave.
11: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
7: Very good morning. आज के मौसम के विषय में भाई मौसम वाले कह रहे हैं कि today it will be a dry and sunny day with plenty of sunshine. और भाई बादलों की कोई खबर नहीं है कहाँ गुम हो गए हैं। ये मास जरूर श्रावण का चल रहा है लेकिन मौसम श्रावण वाला यानी सावन वाला नहीं है। ए वेरी वार्म डे टुनाइट ऑल्सो इट विल बी क्लियर एंड ड्राई नाइट विद नो क्लाउड अराउंड। मैक्सिमम टेम्परेचर लंदन में 25 डिग्री सेल्सियस और ईस्ट मिडलैंड्स में और उसके आसपास के इलाकों में 28 तक जा सकता है तापमान।
11: फॉर स्पेशल रेट्स टू इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, मालदीव्स, थाईलैंड, USA, कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड कॉल साउथऑल ट्रैवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0208 574 8410।
12: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
13: चिंतन चिंतन,
7: स्वागत है आपका मनोरंजन प्रोग्राम के दूसरे दौर में। और भाई दूसरे दौर में हम चिंतन से आपको वेलकम कहते हैं। थॉट फॉर द डे आज का विचार, अक्सर भाई हमारे श्रोता सुनते हैं कि हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की जन्मदिन की बधाई या उनकी पुण्यतिथि पर चर्चा करके उनकी जिंदगी की कोई घटना हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। कहते हैं कल आपने ऐसा नहीं किया, भाई कल समय नहीं बचा, चिंतन में जरूर जिक्र करते हैं। वैसे बता दें आपको कि कल एक जन्मदिन पर विचार था बड़ा अच्छा जो हमें कुछ सिखाता है कुछ बताता है। आज की अगर बात करें तो आज आप जानते हैं कि परवेज मुशर्रफ का जन्मदिन पड़ता है, 11 अगस्त को 1943 में दिल्ली में जन्मे थे मुशर्रफ। मजे की बात यह है कि कल 12 अगस्त को जन्मे थे जियाउल हक जालंधर में। मतलब यह है कि भारत ने पाकिस्तान को प्रेसिडेंट्स भी दिए हैं, डिक्टेटर भी दिए हैं। भाई भारत के भी कुछ नेता जो हैं वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे जब एक ही हिंदुस्तान था, उस वक्त पाकिस्तान नहीं था। लेकिन बात जिसकी हम करना चाहते हैं, कल जिनका हम जिक्र करना चाहते थे, उनके जीवन से कुछ जानना भी चाहते थे, सीखना भी चाहते थे, वो नाम सुनकर के आप चौंक जाएंगे। क्या ऐसे लोगों का भी जिक्र आप भाई कार्यक्रम में चिंतन में करते हैं? बिल्कुल जी, जहां राम की कहानी ये सुनाई जाएगी वहां रावण का जिक्र तो आएगा और भाई उनसे ही सीखना होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों का जिक्र भी आता है जिन्होंने अपने आप को बदला, अपने आप को ऐसे रूप में स्वरूप में ढाला कि भाई लोग उनकी बुराई करते करते उनकी तारीफ भी करने लगते हैं। आज एक ऐसे ही व्यक्तित्व का जिक्र करेंगे आज के चिंतन में।
13: चिंतन

कल 10 अगस्त को फूलन देवी का जन्म हुआ था। नाम सुना ये? कुछ लोग कहेंगे नहीं जी, हमने श्री देवी सुनी है और बहुत सारी देवियां सुनी है, लेकिन फूलन देवी जरूर सुनी होंगी। फूलन देवी दस्यु सुंदरी यानी एक महिला डाकू सरदार, सरदार नहीं कह लीजिए, कल उनका जन्मदिन था और मैंने सोचा कि इनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। डाके डालना, हत्याएं करना नहीं, जीवन को बदलने का एक संदेश भी फूलन देवी से मिलता है। पर जरा सुनिए, हमारे शास्त्र कहते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म शुभम अशुभम, भाई आपने जो अच्छे बुरे काम किए हैं ना, उनका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, आप कितना भी पश्चाताप भी कर ले भले। कर्म पीछा करता है, अपना बदला लेके रहता है। फूलन देवी का जीवन गरीबी, सामाजिक भेदभाव, हिंसा और चंबल के डाकू जीवन, डाकू जिंदगी जीते हुए और फिर आत्मसमर्पण करके पार्लियामेंट तक पहुंचने की एक बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी है, विवादों से भरी हुई। आज के चिंतन में शामिल कर रहे हैं हम हमारी एक पुरानी सहयोगी अनु फ्लोरा का ये भेजा आलेख। अनु स्लो में रहती है और भाई का रेडियो में कंट्रीब्यूट भी करती है। उन्होंने याद दिलाया कि आज ये प्रसंग शामिल कीजिएगा रवि जी, कल को कहा था उन्होंने, कल 10 अगस्त को जन्मदिन था फूलन देवी का। 1963 में उत्तर प्रदेश की जालौन जिले के घूरा कापुरवा गांव में वो जन्मी थी, गरीब मल्हा की बेटी। छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी गई, बड़ी मुश्किलों का सामना कर रही थी गरीबी में, लेकिन बाद में वो चंबल के बिहेड़ों में कैसे पहुंची और फिर 1981 के बेहमई कांड के बाद उनका नाम और उनका वो काम पूरे मुल्क में नहीं विदेशों में भी मशहूर हो गया। बेहमई एक जगह का नाम है, 20 लोगों का कत्ल हुआ था और इस घटना में फूलन देवी के रोल को लेकर के लंबे वक्त तक विवाद रहा, अटकलें भी लगाई गई, कुछ तथ्य भी सामने आए, सबके बयान अलग अलग आ रहे थे। कहते हैं फूलन देवी के साथ अन्याय हुआ जब वो छोटी थी, छोटी उम्र में उनकी शादी हुई, फिर कुछ असरदार लोगों ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया, कहते उनका रेप हुआ और वो एक ऐसी जो मासूम लड़की गांव की थी वो एक खूंखार डाकू बन गई। और सबसे पहले उसने उसी कम्युनिटी के लोगों को अपना शिकार बनाया जिन्होंने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था। और उसके बाद तो साहब एक के बाद एक कत्ल करते हुए वो डाकुओं की सरदार बन गई। चंबल के बीहड़ इलाकों में उसका नाम गूंजता था, उसका आतंक, उसका खौफ था लोगों के दिलों में, खासकर उस जाति के लोगों में जिनके लोगों को उसने चुन चुन के मारा था। फूलन देवी फिल्म भी बन चुकी है उन पर, लेकिन फिर बदलाव देखिए। 1983 में फूलन देवी ने मध्य प्रदेश में सरेंडर कर दिया, पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये कैसे हुआ? बोले ये वो देश है जहां रत्नाकर नाम का कोई डाकू अगर अपने जीवन को बदलने पे आए तो महान ग्रंथों की रचना कर सकता है। उन्होंने लगभग 11 साल फिर जेल में बिताए फूलन देवी ने, और 1994 में रिहाई के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री कर ली। कहानी में यह बड़ा मोड़ आया, 1996 में वो मिर्जापुर से पार्लियामेंट की सीट के लिए चुनी गई। देखो भारत के लोग भाई इतिहास को कितनी जल्दी भुला देते हैं। चंबल के बीहड़ों से निकल करके पार्लियामेंट पहुंच गई फूलन देवी। किसने पहुंचाया? मुलायम सिंह यादव।
मुलायम सिंह यादव की पार्टी से भाई वो एमपी चुनी गई। वही मुलायम सिंह यादव जो रेप के मामले में एक लड़के के लिए कहते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है। खैर साहब, एमपी बनी, सरकारी घर मिल गया दिल्ली में, आलीशान जिंदगी हो गई। अब वो डाकू जो बीहड़ जंगलों में भटकती थी बंदूक लेकर के लोगों को डराती थी, उनकी आवाज, उनका बयान, अब वो पार्लियामेंट में बैठती थी। लेकिन समय का चक्र देखिए, 25 जुलाई 2001 को, एग्जैक्टली 25 थी या 26, आई मीन जुलाई 2001 में दिल्ली में उनकी सरकारी कोठी के बाहर ही गोली मारकर उनकी भी हत्या कर दी गई। हत्या के मामले में शेर सिंह राणा को गिरफ्तार किया गया, एक व्यक्ति को। बाद में अदालत ने उसको कसूरवार ठहराया और उसको भी भाई जेल हुई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अच्छी जिंदगी उसे मिल तो गई, लेकिन जिंदगी छीन भी ली गई, क्योंकि उसने बहुत लोगों की जिंदगी छीनी थी। फूलन देवी, बैंडिट क्वीन, कई नाम थे उसके। अत्याचार, प्रतिरोध, अपराध, न्याय, राजनीति और सामाजिक परिस्थितियों के जटिल संबंधों की कहानी है फूलन देवी। और भाई, और भी वो लोग जो अपराध की ओर प्रवृत्त होते हैं, ये याद रखें, अवश्यमेव भोक्तव्यम, जरूरी भुगतना पड़ता है कर्म का फल, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आपने जो किया है याद रखिए, आप पश्चाताप कर लें, आप माफी भी मांग लें, लेकिन कर्म का फल देर सबेर भुगतना पड़ता है, भोगना पड़ता है, क्योंकि उसके घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता।

भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा, नेकी और बदी का बंदे यही फैसला होगा। यहीं पर स्वर्ग नरक है। गीत कैसा लगा आपको? बहुत सारे श्रोताओं ने तारीफ की है। भाई आज इसे अपने नाम कर लीजिएगा। जो जानना चाहते हैं कि ये गीत किसने गाया, तो भाई आप ही बताइए। सब कहेंगे रफी साहब की आवाज लगती है, पर ये मोहम्मद रफी की आवाज नहीं है, ये अनवर की आवाज थी। भाई अनवर यहां आए तो मैं उनको लेकर के एक थिएटर में गया। वो चाहते थे कि यहां उनका एक शो किसी थिएटर में होते। थिएटर भारत सरकार का है, नेहरू सेंटर कहते हैं, बहुत सुंदर सांस्कृतिक केंद्र जिसमें मंच है, लाइट साउंड सारी व्यवस्थित हैं, हॉल है और पूरी तरह की व्यवस्था है। बड़ा डिसिप्लिन्ड एटमॉस्फेयर है वहाँ का। और वहाँ की डायरेक्टर थी उन दिनों मिसेज महतो। मैंने उनसे कहा कि मैडम आप मिलिए, दूसरे रफ़ी साहब हैं ये। रफ़ी साहब की आवाज़ की बिल्कुल इतनी बढ़िया वो प्रस्तुति करते हैं ये अपने स्वर में, बस यूँ समझ लीजिए रफ़ी साहब हैं। वो इतना नाराज़ हुई, भाई कभी फिर ऐसा मत कहिएगा, कोई दूसरा रफ़ी नहीं हो सकता। उनके सामने ही, अनवर भाई के सामने, और खुद अनवर भी मान गए कि रफ़ी साहब तो रफ़ी थे, कोई दूसरा रफ़ी नहीं हो सकता। लेकिन कितना प्यार करते हैं उस कलाकार को लोग आज भी। क्या साहब, मैंने ये भी बताया था आपको कि जिस दिन रफ़ी साहब की डेथ हुई थी ना, तो मुंबई में एयरपोर्ट पर मेरे भाई मुझे लेने नहीं आए। मैं मॉरिशस से लौट रहा था शो करके और खबर पहले भिजवा दी थी, पर मुंबई हवाई अड्डे पर मैं देर तक इंतज़ार करता रहा। फिर भाभी को फ़ोन लगाया तो भाभी ने कहा आपको पता नहीं रफ़ी साहब की डेथ हो गई है, वो आज घर से नहीं निकल रहे, कमरा बंद करके अंदर पड़े हैं, बस पी रहे हैं और सचमुच बच्चों की तरह रो रहे हैं। इतना प्यार करते थे रफ़ी साहब से वो। हमारे यहाँ कई स्टाफ में हैं लोग जो रफ़ी को गंधर्व का अवतार मानते हैं। कृपा तो थी उन पर प्रभु की। पर भाई गीत ये भी बहुत अच्छा, मुझे तो अनवर साहब का ये गीत जो है बहुत प्यारा लगता है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं को आज के चिंतन में आलेख शामिल था अनु फ्लोरा का। थैंक यू अनु भाई, वो मेरी एक बड़ी प्रशंसक रही हैं, लेकिन वो खुद भी रेडियो प्रेजेंटर हैं और अनीसा जी की तरह और कई दूसरे कलाकारों की तरह बहुत सम्मान देती हैं मुझे। पर भाई वो सुनती भी हैं और कभी कभी सुनाती भी हैं। थैंक यू अनु। रानी सलो में रहती हैं, उन्हें भी चिंतन अच्छा लगा, कहती गाना बहुत ही प्यारा लगा। मानसी आपको भी गीत अच्छा लगा, इसे अपने नाम कर लीजिए। और ये नैना शाह लिखती हैं, ईश्वर कभी हमारे काम के आड़े नहीं आते, अच्छा या बुरा भुगतना ही पड़ता है, स्वतंत्रता दी है प्रभु ने, जो मर्जी करो पर भुगतना तुम्हें ही पड़ेगा। साक्षी बनो कर्म के, कर्म के साथ लिप्त न हो, इस पर कभी फिर चिंतन करेंगे। थैंक यू नैना। फतेह पटेल साहब आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। निर्मला जी आपका संदेश मिला।

0: थैंक यू अरुणा एंड भूपेंद्र पटेल, टोरंटो में उल्लास, महेंद्र क्रोइडन में महेंद्र पटेल, अर्जन जी, राजीव पटेल, आप भी मिल्टन कीन्स में सुनते हैं, रागिनी, नीला चौधरी, पम्मी सिंह और जगदीश भूषी में, और क्या कहने आपके, देशराज बैसन साहब कहते हैं कि जेल से आने के बाद समाजवादी पार्टी के टिकट पर 1996 और 1999 में उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर सीट से लोकसभा की मेंबर चुनी गई थी फूलन देवी जी, लेकिन फिर दिल्ली में उनके सरकारी घर के बाहर ही उनकी हत्या कर दी गई, और हत्या करने वाला शेर सिंह राणा उसी कम्युनिटी से आता जिस कम्युनिटी के लोगों को फूलन देवी ने चुन चुन के मारा था। कहते हैं मैंने 1981 के उस बेहमई कांड के बदले में ये कर्म किया। गांधी जी कहा करते थे, आई फॉर एन आई एंड हाफ द वर्ल्ड विल गो ब्लाइंड। बदले की भावना से भी भाई कर्म जो भी करोगे भुगतना तो पड़ेगा। यह था आज का चिंतन, आज का विचार, और याद दिला दूं आपको कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं भाई, पाउंड का रेट अच्छा चल रहा है, भारत में अगर अपनों को रुपए भिजवाना चाहते हैं तो एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग 128.45 रुपीस। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai Laika Radio.
4: Laika Radio.
5: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
6: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
5: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
7: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turn this classic panto tale on its head and give it an exciting Desi twist.
8: Be sure to catch the show across the Midlands, the Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July, and at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
7: Click rifkotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala. Heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
12: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410, and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
13: No more worries for me.
14: Southall Travel, at all protected.
9: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot Potato Shop, now at Foss Park.
13: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill. A desi tadka is total risk, hai na?
14: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
13: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
15: Lister, Navratri ni dhammakedar rato mate thai jao ready. KDR Events and Beach Promotions proudly presents Navratri Festival 2026. 11th to 20th October, live from India. Garba, Dandiya, music and a full-on festive vibes. Every night from 7 PM at Avanti Field School, Leicester. Tickets just £5 the start. Book your tickets now on Ticket Source or call BJ 07957-477-330. Radio partner, Leica Radio.
2: Leicester Mela with Leica Radio Network. This weekend at Abbey Park, Leicester. Tickets at leicestermela.co.uk.
16: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit heartyhanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit heartyhanks.com today.
2: On this week's Leica Extra podcast, we discuss astrology, truth or trap, hosted by Kush, who talks to an astrologer and palm reader.
17: Let's talk about the next generation of South Asians, because whether it's astrology, whether it's anything to do with gemstones, lucky color, lucky days, palmistry, matching charts, any of that, it's not going anywhere.
2: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
18: Leica Radio.
2: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio, with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world.
0: और लीजिए साहब, बैक टू बैक संगीत में पहला गीत सुनवाते हुए आपको याद दिलाते हैं एक हीरो की जिनका आज जन्मदिन है। वैसे बता दें भाई, फिल्मी सितारों के जन्मदिन और उनकी बारे में ज़्यादा जानकारी देने का बीड़ा जो है वो बाली भाई ने उठा रखा है, और बाकी लोग प्रेजेंटर्स को ये हिदायत है कि भाई वो उनके बारे में ज़्यादा ना बताएं, क्योंकि बाली भाई खोद के विस्तार से जानकारी लेके आते हैं फिल्मी सितारों के बारे में। लेकिन भाई आज इतना तो कहना पड़ेगा कि सुनील शेट्टी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। अब यह मत कहिए कौन सुनील शेट्टी, भाई थोड़े से ही शेट्टी हैं फिल्मी दुनिया में, जैसे शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी, सुनील शेट्टी हाय हुकू वाले मंगलोर में जन्मे थे आज के दिन 1961 में। हैप्पी बर्थडे सुनील भाई। मुंबई में भाई इनका बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है सिग्नेचर।
19: ये लड़की मेरे सामने,
0: हमने वहाँ खाना खाया, बड़ी अच्छी सेवा की भाई इनके स्टाफ ने वहाँ पर।

0: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: कौचु बंद कर रेडियो।
2: नहीं करू कीधु ने।
1: अरे कौचु बंद कर, मैं टीवी जोऊ छे।
2: तमारे जे जोऊ है ते जुओ, समझा ने। जहाँ सुधी रवि शर्मा ने न सांभळू ने त्यां सुधी रेडियो बंद नहीं करू, नहीं करू, नहीं करू।
1: एटले
2: शु? वार छोड़ीस, घर छोड़ीस, पर रवि शर्मा ने नहीं छोड़ू। ना, एटले रेडियो मां रवि शर्मा ने सांभळवानू नहीं छोड़ू।

0: क्या ले लेगी बैर बढ़ा के? दोस्ती कर ले, कुछ मिल जाएगा। भाई ये जो बीन का लहरा है ना, इसको सुन करके लोगों के दिलो दिमाग में वो छवि आती है सांप की, वो फन लहराते हुए, और वो सोचते हैं कि भाई बीन की इस ध्वनि को सांप जो है ना सुनता है, मगन हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि भाई सांप के कान होते ही नहीं है, सांप के कान नहीं होते, वो नहीं सुन सकता है। अब लेकिन अगर आप उसके बिल्कुल फन के पीछे जाकर के चुटकी भी बजाएंगे तो वो मुड़के देखेगा। और वो बीन के लहरे पर फिर झूमता कैसे है, तो आपको बता दें कि सांप का एक नाम है चक्षुश्रुवा। ये संस्कृत का शब्द है और भाई शास्त्रों में उसे चक्षुश्रुवा कहा गया है, यानी आंखों से सुनने का काम लेने वाला। जैसे ब्लाइंड लोग कानों से आंखों का काम ले लेते हैं ना, वो सुन करके पता लगा लेते हैं तो कि भाई किस तरह की छवि सामने है, और वो ध्वनि को बहुत जल्दी, संगीत के बड़े पारखी होते हैं जो ब्लाइंड लोग होते हैं। लेकिन सांप जो है वो आंखों से सुनने का काम लेता है। कैसे? जब भी आप बीन बजाएं या कोई भी आवाज होगी ना, वो हवा में जो लहरें पैदा करती है ध्वनि आवाज, वो उसको पढ़ लेता है बड़ी बारीकी से। और अगर आप उसके पीछे से गुजरेंगे भी ना और वो उधर देख रहा है, तो जैसे ही आप गुजरेंगे फिर पीछे मुड़ के देखेगा वो, तो वो वायु की तरंगों को पढ़ता है, जांच लेता है, पहचान लेता है, इसलिए उसे चक्षुश्रुवा कहते हैं। अब भाई एक खबर और मैं आपके साथ साझा करना चाहता था कि भाई ये रवि नाम के लोग ना, मैं नहीं कहता, बाकी लोग कह रहे बड़े टैलेंटेड होते हैं। चलिए मैं एक रवि की बात कर रहा हूँ, जो उत्तराखंड का नौजवान लड़का है और छोटे मोटे वो आविष्कार करता रहता है। उसने एक वो उड़ने वाली कार बनाई है, यस फ्लाइंग कार, और साहब उसका टेस्ट भी बड़ा कामयाब हुआ है, और अब जैसे ही उसको लाइसेंस मिलेगा तो इसकी तो पूरी फैक्ट्रियां खड़ी हो जाएंगी। फ्लाइंग कार हुआ ये कि ये रवि जो है उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका आप जानते हैं, और भाई अपने घर से वो अगर किसी शहर जाता था तो पढ़ने के लिए भी जब जाता था, 1.5 घंटे का सफर पहाड़ों में से उसे करना पड़ता था। अब साहब वो छोटे मोटे आविष्कार तो कर ही रहा था, उसने एक उड़ने वाला ड्रोन की टेक्नोलॉजी को ध्यान में रख करके उसने उड़ने वाली कार बनाई है। 1 सीटर कार है, लेकिन उस कार ने भाई तहलका मचा दिया है हिंदुस्तान में, और वहाँ के मुख्यमंत्री जो धामी साहब हैं उन्होंने जाके उसे प्राइज दिया है, सम्मानित किया है। और अब भाई रवि जो है, देखना जब उसकी गाड़ियां दौड़ेंगी हवा में, सड़कों पर नहीं, तो भाई वो करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी। पर मजे की बात यह है कि ये आविष्कार किसी बड़े शहर मंगलोर बैंगलोर या बेंगलुरु मुंबई या भाई हैदराबाद से नहीं आया है, एक पहाड़ी छोटे से गांव से ये आविष्कार निकला है, और देखना कि ये पूरी दुनिया में तहलका मचाएगा। वैसे ये उड़ने वाली कारें फ्लाइंग कार्स जो है चाइना और अमेरिका में तो बन चुकी हैं, हिंदुस्तान भी अब उन देशों में शामिल हो जाएगा जहां फ्लाइंग कार्स हवा में तैरती हुई जो है सफर को छोटा करेंगी। ये 1.5 घंटे में जहां पहुंचता था, अब इस कार से 10 मिनट में वहां पहुंच जाता है। तो बधाई हो भाई रवि साहब, नाम कर दिया।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Like a Extra Podcast Update.
2: याद दिला दूं आपको भाई, लाइका एक्स्ट्रा में हमारा नया एपिसोड जो है पॉडकास्ट का वो आ चुका है और टाइटल है उसका, इज एस्ट्रोलॉजी रियल और ए ट्रैप। भाई ये जो भविष्य बताने वाली बातें हैं हाथ देख करके या जन्म तिथि जान करके, तो ये इसमें कुछ सच्चाई भी है या ढकोसला है या बस पैसे बनाने का धंधा है लोगों का, इस पर बहुत गंभीर विचार विमर्श किया है खुश ने। और जरूर देखिएगा इज एस्ट्रोलॉजी रियल और ए ट्रैप ऑन आवर पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 28। लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
0: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.
1: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ £1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ £29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99p से शुरू। और हर्ज़मैन बटर 20 kg सिर्फ £10.99।
3: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लेस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लेस्टर LE5 4UN।
4: लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
5: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio. Start your

0: Disha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500 pounds, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहाँ मर्शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज। कॉल करो 02037736333। मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
5: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame grilled chicken to mouth-watering wraps, it's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV11 5BZ. Pepe's Piri Piri, Pepe-licious.
6: Leicester Miller is back
5: and the stage is about to explode.

छुपे छुपे से रहते हैं, सरेआम नहीं होते। कुछ रिश्ते सिर्फ एहसास हैं, उनके नाम नहीं होते। पर मेरा नाम है भाई रवि शर्मा और कार्यक्रम का नाम है मनोरंजन। दोपहर बाद 1 बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू।

0: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: A very good afternoon to you. Money. भाई पैसा पैसा पैसा, ये हो मुसीबत ये ना हो मुसीबत ना जी. अच्छा ये हो कैसी मुसीबत? मैं कहता हूँ जी, अगर आपको ये मुसीबत लगता है तो आप अपनी ये मुसीबत मेरे गले में डाल सकते हैं. SBI UK याद दिला रहे हैं कि भाई पैसा जो है सदुपयोग करें, अपनों को भिजवाएं, अपनों के काम आए. इस समय अच्छा रेट चल रहा है तो लेट मी टेल यू, SBI UK, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK गिविंग 128.45 रुपीज फॉर 1 pound. यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप. भारत में पैसे भिजवाने के लिए स्टेट बैंक की सेवाओं का भाई फायदा उठाइए. आप ये पैसे भिजवा सकते हैं लेकिन याद रहे कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: कैसे लगा आपको गीत? भाई बीच में कहीं भी न रोकने का न टोकने का साहस कोई कर सकता है, इस गीत को सुनते हुए वक्त जैसे ठहर जाता है। अब आनंद जी भाई कहते हैं कि आपके रवि साहब के सारे गीत एक ही राग में गुथे होते हैं। हाँ, सुन के लगेगा आपको कि जैसे ये गीत जिस राग में बंधा है, अगर आप वो गीत सुने तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, यही सुर लगती है। अगर वो गीत सुने दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला वो बुझेगा क्या, बिल्कुल इसी स्टाइल में यही रिदम इस तरह से चलती है। और बहनों भाइयों, गर्व है मुझे कि मैं उस परिवार से जुड़ा हुआ हूं। रवि साहब की बनाई धुन ऐसी धुन है जो सीधे कानों के रास्ते दिल में उतर जाती है और बस जाती है परमानेंटली, बिना किराया दिए कब्जा कर लेती है दिल पर कब्जा कर लेती है। हर साहब ऐसे ऐसे गीत, पर रवि साहब के सारे गीत एक ही राग में हो इधर उधर ना होते हो ऐसा नहीं है, कुछ गीत ऐसे भी हैं भाई जो थोड़ा थोड़ा सा हटके हैं लेकिन फिर भी हर दौर में बड़े डटके हैं।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley,
2: soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: एक और संगीत रचना रवि साहब की और एक और बार आवाज लता मंगेशकर की।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और बहनों भाइयों, संगीतकार रवि की रचना और लता जी की आवाज. अभी आपने गीत फिल्म आंखें से सुना. और भाई, जब भी मौका मिलेगा ना, ढूंढ ढूंढ के, या वैसे तो इसे तो ढूंढना नहीं पड़ता, क्योंकि ये गीत तो भाई यूं समझिए कि सामने रहता है स्क्रीन पर, कि जब चाहो सुन लो और बार बार.
3: This is Like a Radio. This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
2: उठकर थिरकने को जी चाहता है भाई, सीट से सरकने को जी चाहता है. मेरा मतलब स्लो स्पीड के गीत तो कहीं सुन लिए, अब जरा रफ्तार पकड़िए. ध्यान से, फ्लोर कच्चा है,

साउथ हॉल ट्रेवल का वो संदेश भाई जो हम कई दिन से आपको बार बार याद दिला रहे हैं, गौर फरमाइए। वो कह रहे हैं कि दुबई की यात्रा करने का समय आ गया क्योंकि FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई। तो भाई जरूर यात्रा कीजिए। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पेटेटिव दुबई डील्स ऑन 0208 574 8410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।

0: क्या बात है खान साहब, आंसू बहाने। हिम्मत तो रवि शर्मा साथ गा के दिखाओ ना। कई जगह झटके लगेंगे, कई जगह अटके लगेंगे। लेकिन साहब मैंने खान साहब के ये जब हिंदुस्तान आए तो मेरे सारे साथी गायक कलाकार जो अलका याग्निक के साथ गा चुके हैं, जो बड़े बड़े कलाकारों के साथ संगत कर चुके हैं, भाई खान साहब को सुनने गए तो बिल्कुल जहाँ लोग जूते उतार रहे थे ना वहाँ बैठ गए। और उन लोगों ने कहा भाई आगे आइए आगे आइए, कहते नहीं हम अपनी औकात जानते, जब खान साहब को सुनने जाते हैं तो हमारी जगह यही है। याद आते मुझे अब दुनिया में नहीं है श्याम भटेजा, बहुत बड़े प्रशंसक थे इनके। एक हमारे दोस्त थे नईम अली, उन्होंने अपना नाम अली इसीलिए रखा, वो गुलाम अली खान साहब के स्टाइल में गाते थे, इसी अंदाज में इसी तरह की आवाज में। और भाई उनके प्रोग्राम हम करवाते थे बड़े अच्छे, मैं तो कॉम्पेयर ही करता था शोज को, लेकिन उनके कई शोज जो कामयाब हुए। अब देखिए कमाल की बात है कि श्याम भटेजा भी दुनिया में नहीं है, नईम भाई भी नहीं है, एक बड़े अच्छे म्यूजिक के ऑर्गेनाइजर हमारे जो थे डॉक्टर तरुण वो भी नहीं है, लोग निकल लिए हैं ऊपर, ऊपर वाले ने शायद भाई कोई बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रखा है, सारे संगीत प्रेमियों को संगीतकारों को गायक कलाकारों को ऊपर बुला रहा है। पर यहाँ महफिल सजी है।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
2: मनोरंजन with रवि शर्मा. Like a radio.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: करेंसी भाई अगर आप रेट नोट कर लीजिए, अगर आप पैसे भिजवाना चाहते हैं अपनों को तो एक पाउंड के बदले लैम्फाई वाले दे रहे हैं भारतीय करेंसी में 128.69 रुपीस, पाकिस्तानी 374.66 रुपीस, श्रीलंकन 451.24, बांग्लादेशी टके 166.58 एंड अफगानी 88.39.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: Gold. बताते हुए डर लगता है। द गोल्ड इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 104 पाउंड्स पर ग्राम।
1: राम ज्वेलर्स स्पेशलाइजिंग इन डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, 22 कैरेट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड ज्वेलरी, कॉइन्स एंड गोल्ड बुलियन बार्स। विजिट राम ज्वेलर्स ऑन 116 बेलग्रेव रोड, लेस्टर, और कॉल 0116-266-4278। This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 50th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
3: I hope Major Naina, hum log waqt par pahunche.
4: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping ka perfect destination. Rakhi aur Ganesh Idols ab available hain sabhi Falcon stores par. Onam Sandhya ke liye pre-bookings bhi shuru ho chuki hain. Falcon Snacks 300 grams ki full range sirf £1.99 each. Mustafa Dehraduni Rice 20 lbs sirf 13.49. Suhana Khaman Thokla 500 grams sirf £1.99 each ya 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kg sirf £29.96. S Motiram Namkeen ab sirf 99 piece se shuru aur Herdsman Butter Ghee 20 KG sir 1099.
5: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE12JU and 2A Rollout Cell Leicester LE54UN.
6: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.
0: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान। देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
7: Lester na Little Garba Stars taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday 17th October, Bapore 1 thi 4 at Avanti Field School, Lester. 1 thi 10 varashna kids mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call BHL 07957-477-330. Masti, music and a full-on Garba fun. Radio partner, Laika Radio.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposable available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
11: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
12: I happen to happy valley.
13: It's back and it's bigger.
10: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
13: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
10: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit DiwaliShoppingFestival.co.uk.
13: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: और बहनों भाइयों, ये था आज का मनोरंजन कार्यक्रम। अब आपसे अनुमति लेने का समय हो गया है, पर जाते हुए ये कहूंगा कि यूं मेरे मुस्कुराने की वजह तुम ही बने रहना, यूं मेरे मुस्कुराने की वजह तुम ही बने रहना, जिंदगी में न सही पर जिंदगी बने रहना। बाय बाय,
14: अभी अलविदा मत कहो।

0: फेस्टिव फैल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फैल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फैल्कन स्नैक्स 300 ग्राम की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
1: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN।
2: One performer.
3: टीवी के सामने प्रोडक्शन से कहने क्या पहनी है तुमने साड़ी भैया खिलाड़ियों के खिलाड़ी।
4: Countless personalities.
5: जिंदगी बर्बाद हो गया।
2: A whole universe of entertainment.
6: Nanana function रखा हुआ है।
7: Sunil Grover live UK tour 2026.
2: 29th October Over Arena Wembley London. 31st October Mattioli Arena Leicester.
7: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
2: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
7: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
2: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन।

0: Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Wake up to Kajal on breakfast every weekday at 6 a.m. And drive back with Raj Badden weekdays at 4 p.m. Like Radio. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
2: You're listening to Bali Brahmat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favourites at Asian shops near you.
3: लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया संडे 27th ऑफ सितंबर डी मॉन्टफोर्ट हॉल लेस्टर डोर्स ओपन 6:30 PM शो स्टार्ट 7 PM टिकट्स बुक करें demontforthall.co.uk
4: या मुंबई सैंडविच स्टेशन ऑन 0116-332-0262 और कॉल मिस्टर बी ऑन 07860-280-655 एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-396-35757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
8: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
7: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
8: Also explore 2026 cruises.
7: From Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybound Travel on 01162-167-225. We're at all protected.
9: History divided a nation, but could never divide humanity. Witness the epic reunion of Sunny Deol and Rajkumar Santoshi in Batwara 1947. Starring Shabana Azmi, Priti Zinta, Karan Deol, and Ali Fazal. Produced by Amir Khan. Experience the untold story of courage and hope. Batwara 1947, releasing in cinemas on August the 14th.
10: कुछ शामें कैलेंडर में नहीं, दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं।
11: इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट। Saturday the 5th of September at the Platinum Suite Leicester. Apni seats aaj hi reserve kijiye. For more information call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner Leica Radio Network.
12: क्या आप नर्स फिजियोथेरेपिस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है शुरुआती सैलरी है £39,500 साथ में पूरी ट्रेनिंग लगातार सीपीडी सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स दिलचस्पी है आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स

हेला बाबू 1977 की फिल्म है. आशा भोसले एंड किशोर कुमार इन फुल फॉर्म हियर. लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत है और आनंद बख्शी की लिरिक्स है. सुनिएगा. यार दिलदार तुझे पैसा चाहिए या क्या चाहिए.

0: Leica Gold across Greater London.
1: यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हम

अभी आपने दो प्यारे प्यारे गाने सुने, इसके पीछे जो कहानी है वो सुनकर आपको ताज्जुब भी होगा, एंड यू विल ऑलवेज रिस्पेक्ट दिस पर्टिकुलर नेम इन फ्यूचर। मेहरुन्निसा वॉज बॉर्न टू नादिर शाह एंड सोफिया। नादिर शाह और सोफिया की बेटी मेहरुन्निसा जब छोटी थी तब से एक्टिंग शुरू कर दिया था एज बेबी चांद एंड देन बेबी नाज एंड देन उसके बाद नजीमा। नजीमा ने बड़े बड़े रोल्स किए और इंडस्ट्री में जानी जाती थी एज द रेजिडेंट सिस्टर ऑफ बॉलीवुड। जब भी रोल मिलता था, एक बहन का रोल मिलता था, ऑलवेज यूज टू बी अ सिस्टर्स रोल। आइदर हीरोइन की बहन बनती थी या तो हीरो की बहन बनती थी। अब देखते हैं इनके बारे में कहानी क्या है। हर ग्रैंड मदर, उनकी ग्रैंड मदर देखो, एक्ट्रेस शरीफा बाई। 1930s में शी वॉज अ वेरी फेमस एक्ट्रेस शरीफा बाई। एंड इनकी आंटी जो थी, दैट इज फुफी, एक्ट्रेस हुस्न बानो ऑफ द 1940s। 1940s में एक्ट्रेस हुस्न बानो, शी वॉज बॉर्न इन सिंगापुर ऑन 8th of February 1919, लेकिन वो बॉम्बे आकर उन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी थी। और शी वॉज सो ब्यूटिफुल, शी ऑल्सो अपियर्ड इन अ लक्स सोप एड इन द 1940s। जी हाँ, शी मैरिड एसपी ईरानी, अ फेमस डायरेक्टर, ASPI। एसपी ईरानी ने नाजिमा की लाइफ में बहुत बड़ा एक रोल अदा किया। अभी नाजिमा की बात करें, हाई स्कूलिंग वॉज इन बॉम्बे, लेकिन बीइंग फ्रॉम ए फिल्म बैकग्राउंड, जैसे कि एक्ट्रेस शरीफा बाई एंड आंटी एक्ट्रेस हुस्न बानो, इन लोगों के कारण इनको कास्टिंग मिली एज अ बेबी रोल, बेबी आर्टिस्ट, चाइल्ड आर्टिस्ट बाय द नेम ऑफ बेबी चांद इन हर अर्ली फिल्म्स। दैट वाज ऑल थैंक्स टू एसपी ईरानी। एंड इनको देखा गया था एज बेबी चांद इन फिल्म पतीता। पतीता आपको मालूम है ना, देवानंद और उषा किरण की फिल्म, दैट वॉज अमिया चक्रवर्ती फिल्म 1953 की। तब वो 5 साल की थी पतीता फिल्म में। फिर 1954 में बिराज बहू, वो फिल्म में वो 6 साल की थी। एंड उसमें बिमल रॉय की फिल्म थी, जिसको डायरेक्टर के रोल के लिए, एज अ डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, बिराज बहू ही गॉट एन अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर दैट। इसमें कामिनी कौशल थी, जी हाँ। एंड फिर उसके बाद देवदास, बिमल रॉय की देवदास विद दिलीप कुमार, सुचित्रा सेन, वैजंती माला, इन लोग सब थे। और बेबी चांद 1955 में, अगेन गरम कोट, सिने कोऑपरेटिव प्रोडक्शन कंपनी, एक प्रोडक्शन कंपनी थी फॉर्म्ड बाय राजेंद्र सिंह बेदी। स्क्रीन प्ले उन्होंने किया था, मधुमति का स्क्रीन प्ले किया था अनुराधा फिल्म का, वो राजेंद्र सिंह बेदी। उन्होंने बलराज साहनी और गीता बाली एक्ट्रेस के साथ मिलकर ये सिने कोऑपरेटिव प्रोडक्शन कंपनी बनाई थी। फिल्म नहीं चली गरम कोट, सो इसलिए उन्होंने पैकअप कर दिया। 1954 में ये फॉर्म हुई थी ये कंपनी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, डेब्यू एज अ हीरोइन। अब हीरोइन का रोल एट द एज ऑफ 10, देयर वाज अ फिल्म कॉल्ड प्रिंसेस सबा 1958, एंड आई कुड नॉट फैदम दैट। आर के रहमान की फिल्म थी और कहा गया था कि शी डिड अ डेब्यू एज अ हीरोइन, बट मेरे मानने से तो आई थिंक 1961 में, व्हेन शी वाज 13 इयर्स ओल्ड, उनके फूफा जी ने उनको रोल दिलाया था उमर कैद फिल्म में ऑपोजिट सुदेश कुमार, दैट वाज बाय एसपी ईरानी। तो आई बिलीव के वो पर्टिकुलर
हीरोइन का रोल जो था इनको मिला था उमर कैद इज द फर्स्ट फिल्म ऑपोजिट सुदेश कुमार, उसका एक गाना भी मैं आपको सुनाऊंगा। एंड देन एट द एज ऑफ 17 अगेन फूफा एसपी ईरानी ने उनको निशान फिल्म में शी प्लेस्ड हर ऑपोजिट संजीव कुमार 1965 में। यस, वैसे तो देखा जाए तो नाजीमा ने एक्टिंग किया था

0: अगर आप फिल्म अधिकार देखोगे 1971 की फिल्म, उसमें शी वॉज एक्टिंग ऑपोजिट देव मुखर्जी एंड इट्स अ लव सॉन्ग एंड ब्यूटिफुली पिक्चराइज एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल शी लुक्स. वी आर टॉकिंग अबाउट नजीमा. आर डी बर्मन का संगीत और रमेश पंत की लिरिक्स. फिल्म अधिकार. वी आर डूइंग अ ट्रिब्यूट ऑफ नजीमा ऑन हर फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: Rafi saab ga rahe hain. This was film Nishan, Sanjeev Kumar with

0: बस चैन हमें आ जाए जो बेचैन तबीयत हो जाए।
1: एक खूबसूरत गाना आए दिन बहार के, वी आर रिमेम्बरिंग नजीमा। नजीमा एक्चुअली डिड 45 फिल्म्स, एक्टिव फ्रॉम 1954 टू 75, और ये गाना है फिल्म आए दिन बहार के। इनको नॉमिनेशन मिला था फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का, जब मनोज कुमार जी के साथ इन्होंने बेईमान फिल्म में काम किया था। फिल्म देखेंगे उसमें एक रक्षाबंधन वाला गाना बहुत बड़ा खूबसूरत गाना है उसमें। नेक्स्ट गाना जो है फिल्म डोली, शी वॉज प्लेस्ड एज द वाइफ ऑफ प्रेम चोपड़ा, सो यू कैन इमेजिन डोली फिल्म में क्या हाल हुआ होगा। महेंद्र कपूर और आशा भोसले, आज पिला दे साकी। इसमें बाद में बबीता आती है गार्डन में उसके साथ हैप्पीनेस शेयर करने के लिए। स्टार्टिंग इज अ ड्रंकन सीन, नॉट अ ड्रंकन बट इट्स प्रेम चोपड़ा एंड अ रोमांटिक सीन, अ बेडरूम सीन विद नजीमा।

0: मुझे याद है वो दिन जब मैं सनी स्टूडियोज में एक रिकॉर्डिंग था उन दिनों में, तो मैं गया था सनी स्टूडियोज में और वहाँ पे एक क्राउड जमा हो गया। तो सबसे मैंने पूछा कौन क्या क्या हो रहा है, बोले नया हीरो आया है, नया हीरो आया है। तो उसको खड़ा किया था एंड प्रेस वाले आके फोटोज खींच रहे थे और ऐसा मुश्तंडा मसल वाला, एंड ही वाज स्टैंडिंग देयर एंड एवरीबॉडी वाज गोइंग अराउंड हिम एंड लुकिंग एट हिम एंड ऑल दैट। बड़े बड़ा मस्क्यूलर लग रहा है ये, तो बुतक ये पता नहीं कौन सी इंडिया में कौन से प्रांत से आया हुआ है। तो किसी ने बोला कि ही इज फ्रॉम मैसूर स्टेट, यू नो, एंड ही इज फ्रॉम द साउथ, लेकिन हिंदी बोलता है, सब कुछ बोलता है, ये सब बातें हो रही थी। एंड ही वॉज गेटिंग सो एम्बेरेस्ड, ही वॉज स्टैंडिंग देयर और लोग गोल गोल घूम रहे थे उसके, लेकिन ही वॉज सो स्टर्डी एंड ही वॉज सो मच इन कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ एंड आई रियली एडमायर दैट। एंड आई वेंट एंड सेड हाई कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ही जस्ट नॉडेड एट मी। इतने सालों बाद एक फिल्म थी काला साम्राज्य, काला साम्राज्य में मैंने गीत गाया था, गाना हमारी लाइब्रेरी में नहीं है वो, मैंने सुनील शेट्टी जी के साथ शूटिंग किया उस फिल्म के अंदर। एक नाइट क्लब का सीन है, आज पीने दे शराबियों को जम के शराब आज पीने दे। सो मैं डांस करते हुए आता हूँ, फिर उनसे मुलाकात होती है, हम दोनों डांस करते हैं एंड देन मैं एग्जिट मारता हूँ। वो काला साम्राज्य तो अच्छी दोस्ती, और इन्होंने एक बिजनेस खोला हुआ था ऑफ शर्ट्स, इट वाज कॉल्ड मिसचीफ शर्ट्स एंड दे वर द बेस्ट शर्ट्स आई हैव एवर हैड इन माय लाइफ। क्योंकि आज तक मेरे पास दो पीसेस अभी भी है, जहाँ भी दुनिया में जाता हूँ मैं वो शर्ट्स लेकर जाता हूँ, क्योंकि उसको इस्त्री नहीं करनी पड़ती है, यू डोंट यू कान डू आयनिंग एंड यू जस्ट हैव टू थ्रो द शर्ट्स इन टू द बैगेज इन द लगेज एंड यू वेयर इट वेन एवर यू वॉन्ट एंड इट डजेंट क्रम्पल। सो इन्होंने जब ये फैक्ट्री बंद कर दी तब मैंने बहुत कंप्लेन की, बट ही सेड आई गॉट अ मूव अहेड बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू बिगर बिजनेसिस। उन्होंने एक नाइट क्लब भी खोल दिया, वेरी रिच मैन, हिज फादर एक्चुअली यूज टू बी अ वेटर एंड देन जैसे उडीपी ऐसे ढोसा वाली जगह जो होती है साउथ इंडियन वाली, वहाँ पे एंड देन ही ओन्ड हिज ओन बिजनेस इन इडली डोसा वाली जगह एंड उसके बाद स्टोरी कहानी वहाँ से शुरू होती है। सो एन एम्पायर दैट ही इज बिल्ट फ्रॉम अ डैड हु बिकेम द ओनर ऑफ अ बिजनेस और वहाँ से इन्होंने टेक ओवर कर लिया। And Sunil Shetty is 65 today, born on 11th of August 1961. And he is an actor, a producer, a TV host, 100 plus films inhone ki. Debut thi wohi film 1992 ki Balwan, ji haan Divya Bharati ke saath. And then Vakht Hamara hai 93 mein, phir to Mohra 94 mein, Gopi Kishan 94 again, Dilwale 94, he was in demand after that, Border film 97, Refugee, usme nomination bhi mila tha inko, award mila best villain ka film Dhadkan, and 2001 mein Pyar Ishq aur Mohabbat, debut of Arjun Rampal ka jo debut film thi unki, wo film mein he was the hero. सुनील शेट्टी जी ने बहुत सारी फिल्में की, अभी भी बहुत एक्टिव है एंड ही इज गॉट अ रेस्टोरेंट बिजनेस। से नो मोर, वी गोना विश हिम हैप्पी 65th बर्थडे विद दैट पर्टिकुलर सॉन्ग। वी आर ओनली अलाउड वन सॉन्ग ऑफ 1990s, वरना मैं पूरे गाने इनके सुना देता मोहरा से लेकर। एनीवे, हैप्पी बर्थडे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 128.45 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is Leica Radio.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India, bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting Desi twist.
6: Be sure to catch the show across the Midlands, the Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July, and at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
5: Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: History divided a nation, but could never divide humanity.
2: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
1: Witness the epic reunion of Sunny Deol and Rajkumar Santoshi in Batwara 1947.
3: वो माँ है माँ, माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए.
1: Starring Shabana Azmi, Pretty Zinta, Karan Deol and Ali Fazal.
3: हर बच्चे के मुंह से निकला पहला लफ्ज माँ है.
1: Produced by Aamir Khan. Experience the untold story of courage and hope. Batwara 1947. Releasing in cinemas on August the 14th.
4: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं. एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है. शुरुआती सैलरी है 39,500 pounds, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स. दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स.
5: Get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV 11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
6: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
7: कुछ शामें कैलेंडर में नहीं, दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट. Saturday the 5th of September at the Platinum Suite Leicester. Apni seats aaj hi reserve kijiye. For more information call Mr.
6: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
8: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Mabster no Pani Puri and Pani Puri no Pani.
1: All Mabster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: पवन जी, मैंने सुना है जी? आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है।
3: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो।
4: भाई निकाल माइक।
5: भाई भाई के प्यार कितना सुंदर।
1: The brand new reality TV show Boj Buri Bawal, Monday to Sunday at 10 PM on Colors TV.
6: Like a radio network, proud hospitality partner.

0: Shah Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: History divided a nation but could never divide humanity. Witness the epic reunion of Sunny Deol and Rajkumar Santoshi in Batwara 1947.
2: Oh, Maa ko Hindu Musalman mein na baatiye.
1: Starring Shabana Azmi, Priti Zinta, Karan Deol and Ali Fazal.
2: Har bachche ke muh se nikla pehla lafz Maa hai.
1: Produced by Aamir Khan. Experience the untold story of courage and hope. Batwara 1947. Releasing in cinemas on August the 14th.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
4: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
5: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
6: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
5: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
7: Leica Radio launches Birmingham wide on DAB from September 1st.
8: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
7: Listen back to your favorite shows by logging on to LeicaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app.
8: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: The Golgapian da Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
3: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
4: Lester Mella is back.
5: And the stage is about to explode. Confirmed artist,
4: Lember Hussein Puri. Get ready for full Punjabi energy, Bhangra beats and live Mela vibes.
5: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
4: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
5: Arts Council England.
3: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: जिंदगी।
1: लिसन टू लाइका गोल्ड 2 ऑन लाइका रेडियो मोबाइल ऐप लाइका रेडियो .com एंड एलेक्सा प्ले लाइका गोल्ड 2।
2: भोजपुरी बवाल।
3: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है।
4: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो।
5: हाँ, सही झगड़ा चला था भाई।
2: द ब्रांड न्यू रियलिटी टीवी शो भोजपुरी बवाल, मंडे टू संडे एट 10 PM ऑन कलर्स टीवी।
6: अ ट्रू रेडियो वाली क्रैकर क्लासिक। नेम द 90s नंबर। दिस इज लाइका।

0: is Leica Radio across the Midlands.
1: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 p.m. on Colours TV.
2: I hope me janera hum log waqt par pahunche.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार सीपीडी सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
6: कुछ लोगों की कहानियाँ उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती।
7: A story of love, redemption and second chances returns to the big screen.
6: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा।
7: इमरान हाशमी is back in the much awaited sequel Awarapan 2.
6: इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा या मैं।
7: Witness powerful emotions, breathtaking action, and a soundtrack that stays with you long after the credits roll. Releasing in cinemas from August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
1: Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the King of Sufi Music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham. This October, for sponsorship inquiries, call 07959 250376.
0: Yeah, like a go.

0: head.
1: Leica Radio.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
3: Travel, protected.
4: Location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
4: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
1: This is the Leica Radio Network. Broadcasting across the UK. Bollywood romantic hits throughout the night.